आवाज की दुनिया के दोस्तों और संगीत प्रेमियों, 4 अक्टूबर के महक कार्यक्रम में आपका आदर है, अभिनंदन है और सुखदेव जसवाल का सादर नमस्कार है। घर में अगर बच्चों की जगह हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं सुखदेव जसवाल। आज के कार्यक्रम में पेश करूंगा आपके लिए देव आनंद साहब के फिल्मों के गाने 2 घंटे के लिए। हम श्रद्धांजलि देंगे सतीश धवन को जिन्होंने भारत को साइंटिफिक एज में लाके खड़ा कर दिया। हम श्रद्धांजलि देंगे जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र विजेता को। हम श्रद्धांजलि देंगे महात्मा गांधी जी को, फादर ऑफ द नेशन। और श्रद्धांजलि देंगे लाल बहादुर शास्त्री जी को, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। आपकी फरमाइश पेश करेंगे और फरमाइश भेजने के लिए बहुत ही आसान है, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 9816-2777 9816-2777 और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश आप तक लाने की। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा सुन सकते हैं अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे www.rrr.org.au पे जाके। मोबाइल पे सुनने के लिए एक और तरीका है, अपने फेवरेट ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए एक ऐप कम्युनिटी रेडियो प्लस। कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके आप जहां भी हो अपने मोबाइल के साथ, जो आजकल सबका दोस्त बन गया है, आप सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महक। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है MAHAK महक। आप फोन करके अपना अगर नंबर देंगे तो हम आपको महक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेंगे, जिससे आपको महक में क्या हो रहा है, महक में आप क्या चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या फरमाइश करना चाहते हैं, वो सभी आप डाल सकते हैं। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं mahakradio@yahoo.com पे, mahakradio@yahoo.com।

देव आनंद जन्म हुआ 26 सितंबर 1923 को, 26 सितंबर 1923 को। चार भाई हैं थे देवानंद साहब के साथी, मतलब उनके तीन भाई थे और कुल मिलाकर वो चार भाई थे। मनमोहन आनंद जो एडवोकेट थे, चेतन आनंद और विजय आनंद जो दोनों फिल्मों से संबंधित थे और फिल्में बनाते थे, फिल्में प्रोड्यूस करते थे, फिल्में डायरेक्ट करते थे, बस समझिए कि फिल्में ही उनका जीवन था। देवानंद साहब ने बीए इंग्लिश लिटरेचर में किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और 1954 में वो, माफ़ कीजिए ये बात मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, वो बॉम्बे आए और बॉम्बे आकर मिलिट्री सेंसर ऑफिस, उन दिनों में ये होता था मिलिट्री सेंसर ऑफिस, वहाँ नौकरी की और उन्हें 65 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी। और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA में शामिल हो गए क्योंकि एक्टिंग का शौक था। और 1946 में प्रभात फिल्म्स की फिल्म हम एक हैं उन्हें मिली, जो उन्होंने की, और शूटिंग के दौरान गुरुदत्त साहब से दोस्ती हुई। दोनों ने वादा किया कि देवानंद अगर फिल्म बनाएंगे तो गुरुदत्त को डायरेक्टर लेंगे, गुरुदत्त साहब अगर कोई फिल्म के डायरेक्टर बने तो देव आनंद साहब को हीरो लेंगे। बस इसी दोस्ती ने उनको बहुत आगे बढ़ाया और हम आगे बढ़ाते हैं आज के कार्यक्रम को फिल्म CID के इस गाने के साथ।

देवानंद साहब ने 7 फिल्में बनाई सुरैया जी के साथ। उस समय सुरैया जी हिंदी फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम थी और इतना बड़ा नाम थी कि सब उनके साथ काम करना चाहते थे, और देवानंद साहब ने उनके साथ 7 फिल्में की। और इन 7 फिल्मों में काम करते करते दोनों में प्यार हो गया और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया जी की नानी जिद पे अड़ गई। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी गैर मुसलमान के साथ शादी नहीं कर सकती। भाई ऐसा होता है, आप जानते ही हैं। तो सुरैया जी ने इससे तंग आकर, समझिए या देव आनंद साहब के प्रेम की बात समझिए, उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की। और जो फिल्में उन्होंने देवानंद साहब के साथ की, विद्या, जीत, शायर, अफसर, नीली, 2 सितारे, सनम, सभी की सभी सफल और मशहूर फिल्में बनी उस जमाने की। और आगे चल के जब देवानंद साहब ने अपनी फिल्में बनाई तो उनको बहुत मौका मिला और उन्होंने जो है फिल्म जो भी बनाई, उन्होंने कोशिश की कि गुरुदत्त साहब को डायरेक्टर लिया जाए। और आगे चल के और बताऊंगा इस बारे में, लेकिन उन्होंने जो पेइंग गेस्ट में रोल किया नूतन जी के साथ और जो पेइंग गेस्ट के गाने थे, उन्होंने तो धूम मचा दी। तो पेश है आपके लिए राज की पसंद फिल्म पेइंग गेस्ट का ये बेहतरीन गाना।

क्या बेहतरीन संगीत और क्या बेहतरीन गाना और क्या बेहतरीन एक्टिंग थी देव आनंद साहब और नूतन जी की फिल्म पेइंग गेस्ट में. और फिर आया ये गाना, और ये गाना था फिल्म 9-2-11 का था. और 9-2-11 एक ऐसी कहानी थी जो उन दिनों में जब ये फिल्म बनी थी ऐसी कहानी कोई नहीं लेता था. क्या है भाई, तो एक लड़का लड़की मिले और फिर भागने लगे, और फिर उन्होंने ट्रक चोरी कर लिया और ट्रक चोरी करके भागने. अरे भाई, ऐसी पिक्चरें कौन बनाता था वहाँ उस समय, लेकिन देव आनंद साहब बनाते थे. और क्या फिल्म सफल हुई थी, क्या इसके गाने सफल हुए थे.

0: अकेला है।
1: और अब 2:20 होने को आए हैं स्टूडियो की घड़ी में, और अब समय है संदेशों का। कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद फिर हाजिर होऊंगा देव आनंद साहब की फिल्मों के गाने लेकर, कुछ आपकी पसंद के, कुछ मेरी पसंद के, और कार्यक्रम चलेगा 4 तक। और आपको बता दूं कि CBAA कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनके हम बहुत आभारी हैं क्योंकि उनके सपोर्ट से ही हमारे जैसे एथनिक प्रोग्राम जिन्हें कहते हैं, हमारा नॉन इंग्लिश प्रोग्राम है उनको एथनिक प्रोग्राम कहते हैं, तो हमारे जैसे जितने भी कार्यक्रम हैं वो CBAA कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के समर्थन से, के सपोर्ट से ही चलते हैं। तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें अपना सपोर्ट दिया और हम उनके सपोर्ट से आपके लिए ये कार्यक्रम पेश कर सकते हैं। हर इतवार 2-4 तक पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल।
2: There's so much happening at station sponsor North Ryde RSL. With free live entertainment in the Heritage Lounge and Marble Bar, Friday to Sunday, and low-priced ticketed featured acts in the club's auditorium each Saturday night. There are loads of free games and giveaways galore for members each week, together with the monthly mega draws. And with many quality dining choices, including the Riverviews Bar and Dining, Marble Bar and Cafe, Green Bar, Downstairs Bar and the House of Tong. Where? The North Ryde RSL, where community is our focus.
3: You know, solving mysteries isn't just about investigating clever whodunits. How about becoming a nature detective and solving a very different kind of mystery? Your challenge is to discover and record as many wild species of flora and fauna, including fish and fungi, over 4 and nights, from Friday the 27th of November to Monday the 30th of November. It's all part of the Hunters Hill Southern Bio Blitz, one of the biggest biodiversity surveys in the Southern Hemisphere. So, if you're ready to put your detective skills to the test, search Hunters Hill Southern Bio Blitz to find out how you can take part, or call Hunters Hill Council on 9887 9400. So, Sherlock Holmes, are you ready to solve nature's greatest mystery?
4: 2RRR is a not-for-profit community radio station that is dedicated to delivering you grassroots radio in multiple musical styles, points of view, topical programming and multiple languages. To continue our work, we need your support. Please consider making a donation via our website, 2rrr.org.au. Thank you for supporting 2RRR, your local sound to the world.
1: संदेशों के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। महक 2RRR 88.5 FM पर आज देव आनंद साहब के गानों के इस कार्यक्रम में। फिल्म टैक्सी ड्राइवर पहली फिल्म थी उनकी भावी पत्नी के साथ, जी हाँ, कल्पना कार्तिक, और आगे चल के उन्होंने सुरैया जी को अपने जीवन से दूर करते हुए कल्पना कार्तिक को अपने जीवन में शामिल किया और उनसे शादी की, जो अंत तक चली। शादी के बाद कल्पना कार्तिक ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन देव आनंद साहब के कारण नहीं, ये फैसला उनका अपना फैसला था और उन्होंने घर संभाला और अभी भी वो जिंदा हैं। और देव आनंद साहब जैसे आप जानते ही हैं, वो तो हमें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके ये गाने हम आज भी सेलिब्रेट कर इसलिए करते हैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया पर्दे पर, जो पर्दे के बाहर भी समाज को इतना प्रभावित करके चला गया कि आज भी जब देव आनंद साहब की बात होती है तो बात होती है, जिसे कहते हैं, पॉजिटिविटी की, जीवन को प्यार करने की, जीवन को पूरी तरह से जीने की।

आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। देवानंद साहब के साथ रोमांस, बहुत अच्छे एक्शन फिल्म्स और बहुत सी पॉजिटिविटी वाली फिल्म्स जोड़ी जाती हैं और समझा जाता है कि वो जीवन को केवल एक खुशनुमा अंदाज से ही देखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर इंसान की तरह, हर एक्टर की तरह उनको सभी तरह के रोल मिले, और जब सीरियस रोल मिले तो सीरियस गाने भी मिले, और उन सीरियस गानों में ये बहुत ही बेहतरीन गाना है, हेमंत कुमार जी ने ये संगीत दिया था और आवाज़ भी दी थी। फिल्म है हाउस नंबर 44, और ये मेरी पसंद के गानों में एक बहुत ही पसंदीदा गाना है।

आप सुन रहे हैं महक 88.5 FM पर, अपना मनपसंद कार्यक्रम महक, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर को उनका था जन्मदिन। उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869। और गांधी जी ने हमें सब यही कहते हैं, अपने दम पे और अपने काम से आज़ादी दिलवाई, ये सभी जानते हैं। उनका जीवन देश के नाम अर्पित था, ये भी सभी जानते हैं। सत्याग्रह, सांप्रदायिक सहिष्णुता, खादी का प्रयोग और नॉन वायलेंस, अहिंसा, जिसे एक बहुत ही महान आदर्श माना जाता है पूरे संसार में, वो उन्होंने अपनाया और अपने जीवन के स्तंभ के रूप में उसे स्वीकारा। गांधी जी के आदर्शों का आज के जीवन में क्या रेलेवेंस है? उनके जन्मदिन पर ये सवाल ऐसा सवाल है जो कई भारतवासियों के मन में मचल रहा है और हमें इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। सभी जानते हैं 1947 से पहले और 1947 तक जब भारत आज़ाद हुआ, गांधी जी का योगदान क्या था, सबको पता है। लेकिन आज उनकी जो ये शिक्षा थी, उनका जो ये जीवन पद्धति थी, हमारे सामने जो है और हम जिसके बारे में जान सकते हैं, जानते हैं और सोच सकते हैं उसके बारे में, तो वो कितना मायने रखती है आज के जीवन में। आज अगर गांधी जी जिंदा होते तो उनके आदर्श और वो खुद क्या आज के भारत और भारतवासियों के काम आ सकते थे? क्या आज के भ्रष्टाचार, हिंसा और बेलगाम जीवन शैली के तौर पर और इस दौर में उनकी सोच का कोई महत्व है? अगर थोड़ी गहराई से विचार किया जाए तो जल्द ही हम जान जाएंगे कि उनके आदर्श आज उतना ही मायने रखते हैं जितना के उनके जीवन काल में रखते थे। अहिंसा और सादा जीवन, उच्च विचार को ही लीजिए। गांधी जी कहते थे कि आप सादा जीवन जिए लेकिन उच्च विचारों के साथ। गांधी जी मानते थे कि सादा जीवन जीने से धरती पर इंसानियत का बोझ कम पड़ेगा। आज के कंज्यूमरिज्म, तड़क भड़क और बर्बादी ने धरती को क्लाइमेट चेंज की ओर धकेल दिया है। आप जानते हैं अभी हाल ही में नेपाल में जो हुआ, ग्लेशियर बह गया और साथ ही ले बह गए बहुत सी जीवन और बहुत सी, क्या कहते हैं, बहुत से इंसान। अगर हम गांधी जी का सादा जीवन और शिक्षा को अपनाएं तो धरती की सुरक्षा मेरे विचार से और गांधी जी के विचार से बेहतर हो सकती है। और अगर हम इस बात को नहीं समझते कि धरती की सुरक्षा ज़रूरी है, बहुत से लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है, हम तो होंगे नहीं जब धरती पर प्रलय आएगी। ठीक है भाई, आप नहीं होंगे लेकिन हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो तो होंगी। तो इस बात को नहीं समझते कि धरती की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, अगर ये धरती बर्बाद हो गई तो मानवता का क्या होगा? जवाब बहुत साफ है, अगर धरती ही नहीं रही तो मानवता भी नहीं रहेगी। तो सादा जीवन, उच्च विचार अपनाने में क्या मुश्किल है? केवल हमारी सोच। गांधी जी ने केवल सोच ही दी थी हमें, लेकिन हम उस बात को भूल गए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं गांधी जी ने ये किया, वो किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया। बहुत अच्छी बात है, वो भी सोचना चाहिए, लेकिन जो उनकी सोच है उसको नहीं भूलना चाहिए। गांधी जी ने सोच दी थी हमें, हम उस सोच को भूल गए। सोच ही मानवता की प्रगति का रास्ता है, लेकिन सोच सही होनी चाहिए। गांधी जी ने सही सोच दी जो आज भी हमारी प्रगति का रास्ता, हमारे प्रोग्रेस का रास्ता बन सकती है। उन्होंने कहा था,
An eye for an eye makes the whole world blind. कुछ लोग कहते हैं कि न्याय करने के लिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है तो जवाब में उसी तरह का बुरा उसके साथ भी होना चाहिए यानी an eye for an eye अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ दी तो आपको भी हक होना चाहिए उसकी आंख फोड़ दी जाए लेकिन गांधी जी ने कहा an eye for an eye makes the whole world blind आप समझ गए आंख के बदले आंख संसार को अंधा बना देगी हिंसा और बदला मानवता के दुश्मन है अहिंसा और आपसी सद्भाव मानवता के रक्षक हैं ये थी सोच ये थी शिक्षा महात्मा गांधी जी की ये आज के दौर में पहले से अधिक सीखने की इस बात को जरूरत है आज हम आतंकी हमलों के बारे में बहुत सुनते हैं आतंकी हमले हमारे समाज में होने वाली बातों का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं आतंकी अपने हिंसक हमलों से हमें डराते हैं दबाव बनाते हैं उन पर काबू पाने के लिए क्या किया जाए यही है सवाल आफ्टर ऑल आखिर कैसे आतंकियों का सामना किया जाए आज ये सवाल सबको सता रहा है क्या अहिंसा की शिक्षा से ये हल नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है लेकिन आज एक गांधी की जरूरत है जो संसार को समझा सके कि अहिंसा अपनाकर सभी सुखी रह सकते हैं सद्भाव अपनाकर सारा मानव समाज सुखी रह सकता है आज के भटके हुए संसार को शायद गांधी जी के आदर्शों की उनके जीवन काल से कहीं अधिक जरूरत है गांधी जी तो नहीं रहे उनके आदर्श तो हैं उनकी जयंती उनके जन्मदिन पर हम क्यों ना प्रण लें कि देश और संसार को बेहतर बनाने के लिए गांधी जी के आदर्शों को अपनाया जाए गांधी जी ने कहा था माय लाइफ इज माय मैसेज जो मैंने अपने जीवन में किया है वही मेरा संदेश है हमें भी अपने जीवन को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे जीना चाहिए कि दूसरों के लिए हम प्रेरणा का स्रोत बन जाएं धन्यवाद सुनने के लिए आप सुन रहे हैं महक RRR 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है सुधा की पसंद और सुधा ने पसंद किया है फिल्म ये बहुत ही एक बेहतरीन गाना है और हेमंत कुमार जी का बेहतरीन संगीत है और एक गजल टाइप गाना है लेकिन नहीं भी है संगीत के तौर से देखा जाए तो ये एक बहुत ही प्यारा गीत है

आप सुन रहे हैं महक टू ट्रिपल आर 88.5 एफएम पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार दो से चार बजे तक पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल और आज आपके लिए पेश कर रहा हूं देव आनंद साहब की फिल्मों के गाने और अब आपके लिए पेश है एक बहुत ही प्यारा गाना और उससे पहले ये समाचार जो पंजाब से है 27 सितंबर को ये समाचार छपा और ये छपा जनसत्ता समाचार पत्र में पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो फगवाड़ा रोड जलंधर पर है उसके छात्रों ने पिछली शनिवार की रात को यानी जो कल शनिवार गया है वो नहीं उससे बीते सप्ताह की शनिवार की रात को एक छात्रा के रेप और सुइसाइड के मामले को लेकर पुलिस यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकारी प्रशासन द्वारा संज्ञान और कार्रवाई ना करने के लिए उनके खिलाफ था ये प्रदर्शन जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो छात्र और भड़क गए और पुलिस को उन्होंने अपना रूप दिखाने के लिए उनकी दो गाड़ियों को आग लगा दी डीआईजी और एसएसपी की गाड़ियों में जब एफआईआर दर्ज हुई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो उसकी खबर दी गई कि और उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू ने छात्रों से कहा कि वो शांत हो जाएं हम इस पर कार्रवाई करेंगे लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये हमें नहीं पता लेकिन हमें इतना पता है कि अब आपके लिए जो अगला गाना मैं लेकर आया हूँ वो है एक बहुत ही बेहतरीन गाना देव आनंद साहब की बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म और ये उनकी शुरू की फिल्म थी मुनीम जी और इसका ये गाना अत्यंत ही सफल हुआ था माफ कीजिए ये वो गाना नहीं है जो मैं आपके लिए पेश करना चाहता था ये गाना जो है दो गायकों ने गाया है एक तो ये फीमेल गाना जो आपने अभी सुना लेकिन इसका जो असली रूप जो बहुत ही मशहूर हुआ था वो था किसके किशोर जी की आवाज में जो बहुत पहले से ही किशोर जी देव आनंद साहब के लिए अपनी आवाज दे रहे थे

लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनको मौका मिला भारत के प्रधानमंत्री बनने का। जन्म हुआ उनका 2 अक्टूबर 1904 को। लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वतंत्रता के लिए जहां भारी योगदान दिया, वहीं प्रधानमंत्री बनकर एक मुश्किल दौर में देश का नेतृत्व किया, लीडरशिप दी। प्रधानमंत्री बनने पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, देश के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो चौराहे पर खड़ा पाता है अपने आप को और सोचता है किस ओर जाऊं, लेकिन हमारे लिए ऐसी कोई मुश्किल या झिझक नहीं है, हमारा रास्ता साफ है, आगे की ओर है। घर पर एक समाजवादी प्रजातंत्र बनाना है जिससे सभी को संपन्नता और आज़ादी का जीवन मिले और संसार के सभी देशों के साथ दोस्ती और शांति बनाए रखना है। कितने आदर्शवादी थे लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी ने दूध उत्पादन के लिए देश में व्हाइट रेवोल्यूशन को और अमूल मिल्क कोऑपरेटिव को समर्थन दिया। नेशनल डेयरी को डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। देश में खाने की कमी को देखते हुए उन्होंने देशवासियों को सप्ताह में वीक में एक दिन उपवास रखने के लिए कहा। देश भर में सोमवार को लोगों ने तो उपवास रखा ही, रेस्टोरेंट भी बंद रहने लगे सोमवार के दिन। और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को समर्थन दिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। जय जवान जय किसान उनके नाम के साथ जुड़ गया। जय जवान जय किसान सुनते ही शास्त्री जी की याद आ जाती है और शास्त्री जी का नाम लेते ही जय जवान जय किसान याद आ जाता है। 1965 की लड़ाई में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने सुरक्षा के लिए हर समय तैयार है और किसी भी विदेशी जो है लड़ाई अगर कोई करना चाहता है विदेश दूसरा देश भारत के साथ तो उसके लिए पूरी तरह से अपने डिफेंस के लिए तैयार है। और उन्होंने इस 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान सेना को हमारी सेना ने उनकी सीमा में वापस खदेड़ा, सेना को अपने नेतृत्व से उस मकाम पर पहुंचाया जहां सभी देशवासियों के मन में सेना के लिए सम्मान की जगह बनी। शास्त्री जी ने हमेशा गांधी जी के आदर्शों पर चलने की कोशिश की और प्रधानमंत्री बनकर नेहरू जी की जो लेगेसी थी, उसको जो विचारधारा थी, उसको अपनाया और आगे बढ़ाया। हमारे देश के एक महान नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। अब सुन रहे हैं महक TRRR 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक, जिसमें आज आपके लिए पेश कर रहा हूं देव आनंद साहब की फिल्मों के गाने। किशोर कुमार बहुत ही समय से वो उनके लिए गाने गा रहे हैं और एक से एक बढ़कर उन्होंने गाने गाए हैं देवानंद साहब के लिए। और ये गाना जो है माना जनाब ने पुकारा नहीं, फिल्म है पेइंग गेस्ट और इसको पसंद किया है अशोक ने। तो पेश है आपके लिए किशोर कुमार जी की बेहतरीन आवाज़ में ये बेहतरीन गाना देव आनंद साहब की फिल्म का।

0: चारा नहीं है वल्ला जवाब।
1: पहली अक्टूबर जनसत्ता समाचार पत्र और दैनिक ट्रिब्यून से ये समाचार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये समाचार है कि दुबई से टेल अवीव, जो इज़राइल की कैपिटल है, की फ्लाइट, जो फ्लाई दुबई की फ्लाइट थी FZ1073, 174 यात्रियों को लेकर उड़ी। दो घंटे के बाद कॉकपिट में को पायलट जो था, आप जानते ही हैं कॉकपिट में अक्सर जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं उसमें दो पायलट होते हैं, एक कैप्टन होता है और एक को पायलट होता है। तो को पायलट ने कैप्टन स्मिथ मच्छार, या थोड़ा हटके नाम है स्मिथ मच्छार, पर जहाज में ही रखी हुई क्रैश एक्स, जो कि क्रैश के दौरान काम में आती है ताकि अगर वो जहाज से निकलने में मदद चाहिए तो क्रैश एक्स के साथ वो शीशा वगैरह तोड़ के बाहर निकल सकते हैं, तो उस क्रैश एक्स जो है उससे उन्होंने कैप्टन पर वार किया और उसे घायल किया। उसकी मंशा, जो ये को पायलट था, प्लेन को क्रैश करने की थी। जहाज 20 से 30 सेकंड तक लगातार हवा में नीचे गिरता रहा। यात्री और कैबिन क्रू घबराए, लेकिन हिम्मत से काम लिया। किसने? कैप्टन ने। और कॉकपिट का दरवाजा अपनी घायल हालत में ही कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खोल दिया, जिससे कि कैबिन क्रू, स्टाफ और दूसरे यात्री वहां पहुंच सके और घायल कैप्टन की मदद कर सके। और कैप्टन की हिम्मत के कारण फ्लाइट सऊदी अरेबिया के तबक में इमरजेंसी लैंडिंग करने में सफल हुई। कैप्टन स्मिथ मच्छार गुजरात भारत से हैं, वो एयरलाइन कैप्टन हैं और बोइंग 737 फ्लीट पर 13 साल से ज़्यादा का कमर्शियल फ्लाइंग का एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्होंने अपनी घायल स्थिति में जहाज पर काबू रखने और सुरक्षित लैंड करने के लिए इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ मच्छार को बधाई दी और उनका सम्मान किया। और कैप्टन स्मिथ मच्छार ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी बात की और उनके साथ साझा किया कि उस दौरान क्या हुआ। आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। और अब जो अगला गाना आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, और वो है फिल्म हम दोनों, माफ़ कीजिए, उससे पहले मैं आपके लिए एक गाना पेश करना चाहता हूँ देवानंद साहब और नूतन जी की फिल्म मंजिल का। बहुत ही प्यारा गाना है, इसके बोल बहुत आकर्षक हैं, ज़रा सुनिए और फिर उस पर विचार भी कर सकते हैं।

आप सुन रहे हैं महक ट्रिपल आर 88.5 एफएम पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार दो से चार बजे तक। 3:07 होने को आए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का। कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद फिर हाजिर होऊंगा देव आनंद साहब की फिल्मों के गाने लेकर आपकी पसंद के और कुछ मेरी पसंद के महक ट्रिपल आर 88.5 एफएम पर। और बहुत ही अच्छा समय है अब हमें संपर्क करके बताने का कि आपकी फरमाइश क्या है और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश आप तक लाने की। और नंबर है 9816277 9816277।

0: माफ कीजिए, ये कुछ गड़बड़ हो रही है और हम कोशिश करते हैं कि ये गड़बड़ ना हो।
1: Part of Bendigo Bank, Community Bank Homebush and North Ryde invest in community outcomes. Radio 2RRR is dedicated to working with local youth through the broadcasting medium, as well as to assist adults who are on their rehabilitation journey. Without the significant support from the Community Bank Homebush and North Ryde, this initiative simply would not be possible.
2: Support the bank that supports your community. Call, email or visit station sponsor Community Bank Homebush and North Ryde. Part of Bendigo Bank, the better big bank.
3: Hi, I'm Igor Lihorovich of Take Care of Books. We're proud accountants and sponsors of Ryde Regional Radio Cooperative Limited and to many other non-for-profit organizations across Sydney. Our specialty and service excellence is in understanding and delivering acute and compliant financial accounting needs of community organizations.
4: Thanks, Igor. Take Care of Books works excellently with not-for-profit organisations covering all financial accounting needs. To arrange a free initial consultation, go to takecareofbooks.com.au.
3: We will be proud to serve you as we are of 2RRR.
5: Are you a Ryde resident living with a disability and interested in working?
6: Empower Ryde is a free program for people living with disabilities who want to build job skills, learn about work and business, and connect with others in a friendly and supportive group.
5: The 2026 sessions will be held bi-monthly in the Walumeta Room at Ryde Library at 1 Pope Street, Ryde.
6: Sessions will be held from 10 a.m. to 12 p.m. If you want to find out more about Empower Ryde, please visit the City of Ryde website.
7: If you dig house, disco, EDM classics and forgotten gems from the last 50 years of dance music, mixed with the latest beats from local and international artists, then join Kevin Davies for your Saturday night warm-up, 7 p.m. to 9 p.m. right here on 2RRR 88.5 FM, your local sound to the world.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर 4 अक्टूबर के इस कार्यक्रम में जिसमें आपके लिए पेश कर रहा हूँ आपकी पसंद के और कुछ मेरी पसंद के देवानंद साहब की फिल्मों के गाने। 26 सितंबर 1932 जन्म हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पिता गुरमुख सिंह, माता अमृत कौर, पंजाब प्रांत में उस समय में जो अब पाकिस्तान में है। माता का बचपन में ही देहांत हो गया तो दादी ने उन्हें पाला। आज़ादी के बाद परिवार भारत आ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो उस समय पंजाब के होशियारपुर शहर में थी, उन्होंने बीए की 1952 में और फर्स्ट आए पूरी यूनिवर्सिटी में। 1954 में उन्होंने मास्टर्स की इकोनॉमिक्स में, उसमें भी फर्स्ट आए। इकोनॉमिक्स ट्रिपको की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से 1957 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में डी फिल की, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, उन दिनों में भी होती थी, अब भी है डी फिल, बहुत कम लोग करते हैं आजकल, लेकिन अब डॉक्टरेट हो गई है पीएचडी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से 1962 में। बहुत लंबी लिस्ट है उनके काम की, सीनियर लेक्चरर इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी, रीडर इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में भारत के नुमाइंदे, प्रोफेसर इंटरनेशनल ट्रेड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एडवाइजर मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन के चीफ, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के, सेक्रेटरी जनरल साउथ कमीशन जनरल जनीवा स्विट्जरलैंड, एडवाइजर इकोनॉमिक अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और फिर बने फाइनेंस मिनिस्टर, जिसकी वो कहानी बताते हैं कि प्रधानमंत्री जो थे उस समय, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आकर उनसे कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो मनमोहन सिंह जी कहते हैं मैंने तो हल्के में लिया कि ऐसे ही आ गए हैं बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़े होता है। लेकिन अगली सुबह वो फिर आए प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के और गुस्से में बोले तैयार होइए और राष्ट्रपति भवन पहुंचना है शपथ लेने के लिए, आपको मैंने कल बताया था। तो उन्होंने समझा कि ये तो सीरियस बात है। इस तरह से वो कहते हैं कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना और मेरा राजनीतिक सफर, मेरा पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई। फिर वो राज्यसभा के सदस्य बने असम से 1991 में, 1995 में, 2001 में, 2007 में और 2013 में। 1998 में 2004 तक वो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे राज्यसभा में और इसी तरह से आगे चलते रहे अपने राजनीतिक सफर में। और पी चिदम्बरम को उन्होंने अपने जो है काल में, जो उन्होंने 22 मई 2004 को संभाला, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया पी चिदम्बरम को और भारत की इकोनॉमी को 8-9% की दर तक ले गए जी ना। और वही जाने जाते हैं भारत की इकोनॉमी और भारत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको इंटरनेशनल स्टेज पर लाने के लिए। गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्थापित की 2008 में, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एजेंसी कायम की जिसने आगे चल के आधार कार्ड बनाया, जिसके कुछ क्रिटिक भी थे और लेकिन अब ये सिचुएशन है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की ये सोच आधार कार्ड की आज एक जीवन की सच्चाई बन गई है भारत में। राइट टू इंफॉर्मेशन कायम किया जिसको आजकल काफ़ी उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम किया जा रहा है। द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन कायम किया, क्योंकि सरकार जब भी अपना कोई काम करना चाहती है तो जनता की लैंड कभी कभी उन्हें लेनी पड़ती है, तो उसके लिए उन्होंने फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी कायम की। और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उन्होंने बनाया 2009 में। जीवन के साथ चीन के साथ उन्होंने संबंध सुधारे, अमेरिका के साथ संबंध सुधारे। चीन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों को भारत का दौरा करने के लिए बुलाया, वो आए और दौरा किया भारत का। जापान से संबंध सुधारे और यूरोपियन यूनियन के देशों से उन्होंने संबंध सुधारे और 2009 में दूसरी बार चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने 22 मई 2009 को। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले प्रधानमंत्री थे जो 5 साल पूरे करके दोबारा प्रधानमंत्री बने। 2014 के चुनाव उन्होंने नहीं लड़े। 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी की चेयर ग्रहण की, जवाहरलाल नेहरू चेयर। 2010 में न्यूज़वीक ने लिखा, न्यूज़वीक आप जानते ही हैं टाइम मैगजीन की तरह एक बहुत ही संसार की मशहूर मैगजीन है, उन्होंने लिखा ऐसा लीडर जिसे दूसरे लीडर प्यार करते हैं। जी हाँ, ऐसे कितने लीडर होते हैं, ऐसे लीडर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। खुशवंत ने सिंह ने जो भारत के एक बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारत का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई रहा है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 1952 से 2014 तक उन्होंने अनगिनत अवार्ड्स पाए। 1987 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रहे हैं वो। इतने सारे सामान हैं, अभी चाहूँ तो आधा घंटा और बोल सकता हूँ उनके बारे में, लेकिन कार्यक्रम जो है उसमें संगीत भी है तो संगीत को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी है इस कार्यक्रम में, ख़ासतौर से आपके फरमाइशों की। जैसे कि शांति की पसंद है, ये फिल्म है हम दोनों, गाना है अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं।

जनसत्ता समाचार पत्र में 3 अक्टूबर को ये समाचार आया कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो सर नाम से मशहूर है उसके विरुद्ध अब जनता उमड़ पड़ी है. सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश में प्रदर्शन हुआ 2 अक्टूबर को और सीजेपी ने कहा, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी का शॉर्ट फॉर्म है, कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे आने तक आंदोलन जारी रहेगा. नई दिल्ली के जंतर मंतर, लखनऊ की सड़कों पर भी प्रदर्शनकारी, मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शनकारी और भी दूसरे शहरों में प्रदर्शनकारी. दिल्ली में प्रदर्शन के में शामिल थे आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन. और प्रदर्शनकारी सर में जो गड़बड़ी है जिसकी चर्चा हुई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में, उसको लेकर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. और पुलिस ने 700 प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में हिरासत में लिया. और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो नागरिक हैं भारत के, किसी की प्रजा नहीं है. आप जानते ही हैं क्या फ़र्क है, आज के डेमोक्रेसीज में नागरिक होते हैं और पुराने राजाओं के सिस्टम में प्रजा होती थी. तो जनता का कहना है कि हम नागरिक हैं भारत के, किसी की प्रजा नहीं. और मुंबई पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ, जो उन्होंने शिवाजी पार्क में आंदोलन किया, उसके खिलाफ FIR दर्ज की और 400 से 500 तकरीबन लोग उन्होंने हिरासत में लिए. गोवा के एक वोटर ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है इसी सिलसिले में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे Form 8 की जगह Form 6 भरने को कहा है और ये गलत है. उसके अनुसार उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है. Form 6 नए वोटर्स के लिए है जो मैं नहीं हूं, और Form 8 एड्रेस चेंज के लिए है जिसे इलेक्शन कमीशन ने मेरे दायर करने के बाद गलत तरीके से उसे रिजेक्ट किया है. मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे. तो उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है कि उसके केस की तुरंत सुनवाई की जाए और बताया जाए कि वो कहाँ, उसकी सिचुएशन क्या है. हमारी सिचुएशन ये है कि अगला गाना एक फरमाइशी गाना है और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की, और फिल्म आप जानते ही हैं आज देवानंद साहब की फिल्मों के गाने हैं. तो ये जो गाना है ये भी देवानंद साहब की ही फिल्म का है, और देवानंद साहब की फिल्म जिसका ये गाना है वो है असली नकली. इसे सुनते हुए आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, और हमारा ईमेल भी आप ज़रूर उसका प्रयोग कर सकते हैं. हमारा ईमेल है mahakradio@yahoo.com, MAHAKRADIO, MAHAKRADIO, mahakradio@yahoo.com, और बता सकते हैं कार्यक्रम में अगर आप कोई सुझाव चाहते हैं और कोई बदलाव चाहते हैं तो बता सकते हैं, अपनी फरमाइश बता सकते हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट की मैंने बात की थी पिछले समाचार में, तो उसके बारे में और समाचार ये है कि इंडियन एक्सप्रेस के सितंबर 2026 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर्स सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 14 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, 14 बार शिकायत दर्ज की, और इसमें उन्होंने कहा कि SIR जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन है उसकी कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार द्वारा फॉर्म 6 में बिना उन्हें कंसल्ट किए बदलाव करने के खिलाफ भी उन्होंने एतराज जताया था अपनी इन रिपोर्ट्स में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब में कहा कि फैसले सबकी सहमति से लिए गए, विपक्ष ने मुद्दे को बहुत तूल दी और जवाब मांगे। टीएमसी की महुआ मोइत्रा, आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस जो है बंगाल की, उसकी लीडर नहीं बल्कि मेंबर महुआ मोइत्रा ने इस बारे में FIR भी दर्ज की सुप्रीम कोर्ट में, और PIL भी दर्ज की गई है इस मामले में, और इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। विपक्ष ने और कॉक्रोच जनता पार्टी ने CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट PIL पर सुनवाई करेगी। और 30 सितंबर को webdunia.com एक ऑनलाइन समाचार एजेंसी है, उसमें समाचार आया कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में CISF के कैंप में जवानों के ग्रुप में आपसी बहस हो गई। एक जवान ने AK-47 राइफल से साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी, फलस्वरूप एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल्स की यानी 4 लोगों की मृत्यु हो गई। फायरिंग करने वाले जवान को काबू में करने के बाद गिरफ्तार भी किया गया। और इंडिया टुडे में 30 सितंबर को समाचार आया कि जम्मू कश्मीर के बड़गांव में आतंकी मुठभेड़ में पाकिस्तान के LET लश्करे तोयबा के कमांडर मूसा, जिसको सलमान शाह भी कहते हैं, उसको मार गिराया गया। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में आतंकियों को चुनौती दी गई थी और आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी, और मूसा की तलाश जो पहले से जारी थी उस पर फायरिंग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पीर पंजाल के इलाके में उसके कई हमलों से दुखी थे वहाँ के लोग, और हम किसी से कोई दुखी नहीं हैं, लेकिन हम आपकी फरमाइश से बहुत ही खुश होते हैं जब भी हमें मौका मिलता है आपकी फरमाइश को पेश करने का। जैसा कि ये अगली फरमाइश जो है ये है माही की, और ये गाना जो है देवानंद साहब की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, और फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है, उसका है ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं हेक्टर टिबलार 88.5 एफएम पर. आज देव आनंद साहब की फिल्मों के गाने और अब समय है 3:34 और अब समय है कुछ संदेशों का.
1: Where's a great place to socialize or hold a function?
2: The Bizzo Club Eastwood, with its ultra-friendly and personal atmosphere.
1: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wines and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetizing bar snacks.
2: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
1: 2RRR sponsored the Bizzo Club Eastwood, a great place to meet.
2: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
3: It's back again. The first East Ride Scout Group's car boot sale is returning with bargains galore. Whether you're hunting for clothing, toys, books, furniture, plants, bric-a-brac, or perhaps something completely unexpected, there's bound to be more than one treasure that catches your eye. And while you're browsing, the Scouts will be firing up the barbecue with delicious cakes, coffee and cold drinks available to keep those bargain hunting appetites satisfied. The date is Sunday the 1st of November from 8 a.m. until 1 p.m. and you'll find it at the corner of Bad Joe's and Twin Roads in North Ryde. For more information or to book a car boot space of your own, search 2026 Car Boot Sale East Ryde Scouts or telephone Yana on 0417 658 466.
4: We interrupt our program to bring you this important message.
5: If you love listening to 2RRR, you should join the community and become a member. 2RRR membership allows you to get involved in all aspects of broadcasting and supports 2RRR to stay on air. Download an application at 2RRR.org.au or phone us on 9816 2988 for more information. Let your voice be part of your local sound. 2RRR.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर. आज देव आनंद साहब की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में और अब बात करने का समय है सतीश धवन जी के बारे में. 25 सितंबर 1920 को उनका जन्म हुआ और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बीएससी की बैचलर ऑफ साइंस, फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और एमए इंग्लिश लिटरेचर में की. क्या बात है, कहाँ इंजीनियरिंग कहाँ इंग्लिश लिटरेचर. लेकिन वो बहुत ही एक मेहनती और अलग अलग इंटरेस्ट वाले व्यक्ति थे. यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा यूनाइटेड स्टेट से एमएससी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, फिर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की, उसके बाद डबल पीएचडी की मैथमेटिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में. 1972 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने. 1979 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट पर डायरेक्टर के तौर पर काम किया उनके अंडर. सैटेलाइट लॉन्च असफल रहा. सतीश धवन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उन्होंने कहा कि लॉन्च इस बार असफल रहा, लेकिन उन्हें अपनी एसटीवी टीम है उस पर पूरा विश्वास है और अगली बार टीम जरूर सफल होगी. 1980 में लॉन्च सफल रहा. तब सतीश धवन ने डॉक्टर कलाम को अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कहा. डॉक्टर कलाम ने उनकी उदारता को हमेशा याद रखा, कभी नहीं भूले. जब असफलता हुई तो सतीश धवन ने जिम्मेवारी ली अपने ऊपर और जब सफलता मिली तो श्रेय दिया डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को. डॉक्टर सतीश धवन ने इनसैट और टेलीकॉम सैटेलाइट IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया. 3 जनवरी 2002 में 81 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के बाद सैटेलाइट लॉन्च सेंटर श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है उसका नाम उनके सम्मान में रखा गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर. और 1971 में उन्हें पद्म भूषण से और 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. यदि कुछ बातें हमारे महान साइंटिस्ट सतीश धवन जी के बारे में और उम्मीद है आपको इससे कुछ जानकारी जरूर मिली होगी. और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है एक फरमाइशी गाना, और यह है फिल्म तेरे घर के सामने, जिसका टाइटल सॉन्ग तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा अत्यंत ही सफल हुआ था. और अत्यंत ही सफल हुआ था ये गाना, दिल का भंवर करे पुकार.

खेल की दुनिया में आजकल क्या हो रहा है उसके बारे में आइए बात करते हैं। तिरुवनंतपुरम में भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। भारत ने बनाए जीतने वाले रन और वेस्ट इंडीज 295/7 पे आउट हो गई। और विराट कोहली ने बनाए बहुत अच्छे रन और 15,000 रन बना चुके हैं वो। सचिन तेंदुलकर से 341 रन आगे हैं और भारत ने जवाब में बनाए थे 295/7 के 300 रन बनाए थे उन्होंने दो विकेट खोकर और वेस्ट इंडीज उसका मुकाबला नहीं कर सकी। एशियन गेम्स में भी भारत ने खूब चमक दिखाई है। चीन ने जो है 341, जापान ने 269 और कोरिया ने 150 और भारत ने 85 मेडल जीते हैं जिनमें से 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज है। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीतने पर उनको जो नंदिनी है टीम की मेंबर उसको 3 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता और 44 साल बाद इस जीत ने इतिहास रचा है। और मेंस हॉकी टीम ने भी मलेशिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और पते की दुनिया की बात करें तो 26/11/8 को आतंक की हमले में कसाब की गिरफ्तारी, वकील उज्जवल निकम का रोल और किस तरह से उन्होंने वकालत की उस पर बनी है फिल्म प्रहार। और उज्जवल निकम का रोल किया है राजकुमार राव ने। मिथुन चक्रवर्ती का घर जो मड आइलैंड में है 1.5 एकड़ में है और परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग घर हैं, कॉटेज है। मेहमानों के लिए एक अलग कॉटेज है, मेहमान नवाजी के लिए अलग जगह है और यहाँ पर बॉलीवुड से जुड़े कई मेहमानों की पार्टियाँ हो चुकी हैं। और फिल्म दृश्यम 3 जो है शुक्रवार को रिलीज हो गई है। अजय देवगन की दृश्य सीरीज की ये अंतिम फिल्म है और पहले ही दिन उसने 95 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। 2 अक्टूबर को ही प्रेम कीटाणु भी रिलीज हुई और करीना कपूर ने अपने रेडियो शो में शाहिद कपूर की बीवी मीरा कपूर से बातचीत की और करीना कपूर ने शाहिद कपूर से आप जानते ही होंगे उनका प्रेम प्रसंग रहा 2004 से 2007 तक। और कुछ और बातें करें हमारी जन्मभूमि की, कुछ इधर की कुछ उधर की। क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली आज कल इंग्लैंड को अपना घर कहते हैं। हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया उसके बारे में तो अभी आपको बताया मैंने। इंडियाज बेस्ट डांसर का विनर बना रितेश पाल, उन्होंने ट्रॉफी और 15 लाख रुपए का इनाम मिला और उनके गुरु को शादी का टिकट मिला क्योंकि वो रुके हुए थे कि जब तक ये नहीं जीतता वो शादी नहीं करेंगे। विमल इलायची के एड पर एफडीए के केस के सिलसिले में अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और शाहरुख खान ने अपना जवाब दायर कर दिया है कि ये उन्होंने एड किस लिए किया। और नीतू अरोड़ा ने दिल्ली के शाहदरा से प्रीत विहार के लिए टैक्सी ली। रास्ते में कैब में अपना बैग छोड़कर कुछ खरीदने के लिए थोड़ी देर के लिए कैब से उतरी। कैब ड्राइवर बैग समेत चंपत हो गया लेकिन पुलिस ने शिकायत पाने पर उसको अरेस्ट कर लिया है। और हमारी कर्म भूमि की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन गायक जॉन फार्नम को सम्मानित करने के लिए मेलबर्न के रॉड लेवर अरीना में संगीत की दुनिया के दिग्गज लोग आए और जुड़े वीडियो लिंक द्वारा इंग्लैंड, पेरिस और कई दुनिया के शहरों से। और केट सिब्रानो, जिमी बांस, टीना अरीना, कोल्ड प्ले जैसे गायक जुड़े इस कार्यक्रम से। सोमवार से चैनल 7 पर पॉपुलर शो MKR शुरू हो गया है, उसके मजे लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी ने कहा है कि चीन और US को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसे आप जानते ही होंगे उसके जैसा एक समझौता करना होगा। और नॉर्थ शोर सिडनी में मशहूर अस्पताल सेंट विंसेंट्स हॉस्पिटल के चीफ और ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ साइकाइट्रिस्ट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उन्होंने उनका नाम है प्रमोदी गुणरत्ने, उन्होंने सिडनी के डाउनिंग सेंटर से दरखास्त की है कि क्रिमिनल्स को जो कि मानसिक रूप से पीड़ित हैं उन्हें
वहां यानी सेंट विंसेंट हॉस्पिटल में ना भेजा जाए क्योंकि उनके कारण इलाज के दौरान नर्सें जो हैं उन पर बहुत प्रेशर पड़ता है और वो काम करने में सफल नहीं होती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कैश रेट 0.25% बढ़ा दिया, आप जानते ही होंगे, और काफ़ी लोगों को इससे तकलीफ भी है, मुश्किल भी है, लेकिन हमें आपकी फरमाइश से कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि जैसे कि ये लक्ष्मी की पसंद है, अगला गाना देव आनंद साहब की फिल्म का और ये है उनकी बहुत ही एक जैसे कहते हैं सफल फिल्म 16 साल।

विविधता है वहाँ पे। राजस्थान में ऊँटों की सवारी है, जम्मू कश्मीर में स्कीइंग है, हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग है, पश्चिमी देशों में जो भारत की छवि दिखाई जाती है वो बिल्कुल गलत है उनके अनुसार। पंजाब की खेती का नज़ारा, हर प्रदेश का अपना अपना खिंचाव है, कहानी है, ऐसा कहा उन्होंने। और भारत में पहली बार झरनों की सर्वेक्षण किया गया है, सर्वे किया गया है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 10 राज्यों में 14,468 झरने हैं। मणिपुर में 3,941, महाराष्ट्र में 3,652, उड़ीसा में 1,957 और पश्चिम बंगाल में 1,686, गोवा में 1,196, त्रिपुरा में 1,049 और असम में 792 और तेलंगाना में 148, आंध्र प्रदेश में 34 और राजस्थान में 13 झरने हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये झरने खास तौर से जो वो झरने जो खतरे में हैं उनके संरक्षण के बारे में भी काम किया जाना चाहिए। और आपको बता दूं कि अगले सप्ताह जो कलाकार हैं जिनके जन्मदिन हैं उनमें हैं यश चोपड़ा जी, रवि चोपड़ा जी, रणबीर कपूर, लता मंगेशकर, आशा पारेख, ऋषिकेश मुखर्जी, एस डी बर्मन साहब, रवि चोपड़ा जी और मजरू सुल्तानपुरी। लगता है सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना बहुत ही एक कलाकारों को पैदा करने वाला महीना है। मशहूर लोग जिनके जन्मदिन हैं अगले सप्ताह, जैसा आप जानते ही होंगे, रामनाथ कोविंद जी हैं और चांद बरदाई हैं जो कवि थे पृथ्वीराज कपूर जी के समय में। और अब एक गाना आपके लिए मैं पेश कर रहा हूं जिसकी एक झलक ही पेश करूंगा क्योंकि समय की कमी है। और ये जो गाना है ये है फिल्म गाइड का। जानते ही हैं आप गाइड, देवानंद साहब की शायद क्राउनिंग ग्लोरी फिल्म रही है ये।

और आज हम जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र विजेता जो हैं उनको श्रद्धांजलि नहीं दे पाए इस कार्यक्रम में, तो अगले कार्यक्रम में मैं उनको श्रद्धांजलि जरूर दूंगा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में उनको नहीं हम श्रद्धांजलि दे पाए, लेकिन कार्यक्रम का समय भी अब समाप्त होने को आ गया है, आपसे इजाज़त लेने का समय आ गया है। और देव आनंद साहब की बात करें तो उनको 1965 में नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया और फिल्म थी गाइड। 2002 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें, 1959 में बेस्ट एक्टर फिल्म कालापानी, 1967 में बेस्ट फिल्म गाइड, 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2013 में 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा में पोस्टेज स्टैम्प उनके सम्मान में जारी की गई 3 मई 2013 को, और 3 दिसंबर 2011 88 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। और अंतिम गाना जो आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ वो उनकी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म से है, और फिल्म थी प्रेम पुजारी और अब भी है, और ये एक फरमाइशी गाना है, इसकी फरमाइश की है डॉक्टर पारिक ने। इसे सुनते हुए मुझे सुखदेव जसवाल को आगे दीजिए, नमस्कार।